0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: नेपालमा
1: पाजिना बिखा साँपनको विषयमा छु। एक ठोर गरैचा जुन खास कै रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्छ, यी कटला से निबठाई फे स्याकत, तर कटला पाछ डेही भाग जो निचलना कै सास फ्यार जो निसेकना मे से लक्क हुई सेक्ठा। और रठ डोम जुन बड़ा रिसाहा मेरी रठ निकर फाट फुले थ डोम साँप दिन वा रात दुनू में देख पड़ना ओ खास कै संजा ध्यान देख पर्छ। निकर कटला से फे लक्क हुई सेक्ठा ओ और रठ कैली जातक साँप निकर कटला कलसे कटला भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था। रकत फे पाटी होकर रकत बहना हुई से था। उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकारना बाधे सा ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था, तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था।
2: बर्खा छाको अनाज बिग्रिना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना धुर बिना कथा बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बचारा नासि बेस सापनको दसैँको घटना धुर बिना कर्लक पादै
3: झुर जसिन सापनको दसैँ हानिकारक निरहत उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
4: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कै पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै छ।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
7: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ MDBS MD इन्टरनल मेडिसिन DM कार्डियोलोजी।
8: डाक्टर आउने दिन श्रावण 9 गते शनिबार समय बिहान 10 बजेदेखि
7: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
6: उपचार हुने समस्याहरू
7: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन श्वासमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
6: साथै मुटुको इको रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14306 र 98486-39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनैल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कमर घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26
3: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
4: के तपाईलाई थाहा छ
5: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
4: हो र
5: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
4: अनि
5: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
4: के छ त विकल्प
5: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
4: विस्तारै गर्दा हुँदैन
5: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
5: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था कहा का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी जेबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ
4: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
5: यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
4: मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
3: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने
5: डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते शनिबार
3: साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ
4: स्थान मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उपरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मयलाभ सम्प्रपात्र नेपाली पात्र म फेसुन्टी ढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के पंचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण कार्यशाला सम्पन्न। रेडियो प्रविधि मैत्री बनेना सुझाव। पुष्पलाल स्मृति दिवस में खुटेना भूरा खानी सामुदायिक मनोम वृक्षारोपण। तीन ठो संसदीय समिति के बैठक बैठी। हाइड्रोजन सवारी संबंधी नीति बनेना सरकार द्वारा सुझाव आह्वान।

पूरा खबर प्रतिनिधि सभा सदस्य कमल ग्याली सामुदायिक रेडियो समय अनुसार रूपान्तर हुना सुझाव देति संचार माध्यम कोन के आचार संहिता मरलक पत्रकारिता करना आवश्यक अलग बोटिलो बाटी जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी सामुदायिक रेडियो समुदाय जनता के चाहना बुझपना खोजमूलक तरीका में से समाचार संप्रेषक कर पर्णावर्ती कर्मचारी के क्षमता विकास के कार्यक्रम फिर संचालन करना पर्ना सुझाव दिलवाट टीकापुर नगरपालिका के पूर्व नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल स्थानीय के मूल्य मान्यता अनुसार डिजिटल प्रविधि अनुसार आग बढ़ना आवश्यक हुई कि मह ध्यान देना जरूरी लगोटिलोट सामुदायिक रेडियो के पूर्व निदेशक भुवनेश्वर अधिकारी सामुदायिक रेडियो सक्कूवर्ग क्षेत्र समुदाय के लाख प्रशस्त हुई काम करती रलक यह निरंतरता के लाख सक्कू क्षेत्र के सहयोग आवश्यक लगबोटिलोट और पूर्व निदेशक मातृका प्रसाद तिमिलसेना प्रविधिकी विकास संघ चुनौती थपलक बोटेटी पत्रकारिता में चुनौती सामना करती सामुदायिक रेडियो सचेतना कार्यक्रम करना पर्ना योजना बनाके समुदाय समा जाना आवश्यक लग बोटिलोट टीकापुर बहुमुखी कैंपस के सह प्रधानाध्यापक डाक्टर मीन बहादुर शाही सामुदायिक रेडियो बलगर बनीना श्रोता सम जानना जरूरी लग बोटिलोट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की जिला सहसचिव गणेश विक्रम शाही टेक्नोलॉजी अनुसार फरक तरीका में से आग बढ़पना सुझाव दिलवाट नागरिक समाज टीकापुर के संयोजक भीमराज चपाई स्थापना कालमय सामुदायिक रेडियो के भावना स्पष्ट हुईलक यहसम पुग्ना सफल हुईलक बोटिलोट वहां के सहकारी कार्य बनेना आवश्यक लग बोटिलोट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नगर सभापति इंजीनियर रविन्द्र विष्ट सामुदायिक रेडियो स्थानीय निकाय लगायत सक्कू सहयोग करपना रेडियो फे आपन ब्रांड बढ़ाईना ध्यान देना आवश्यक लगबोटिलोट एफएम के पूर्व अध्यक्ष नवराज राउल रेडियो आपन जग्गा में टावर सर्ना सेक्रेसी मजा हुईना बोटेटी टीकापुर क्षेत्र के विकास के बारे निरन्तर बहस चलैन आवश्यक लगबोटिलोट नेकपा एमाले के नगर सचिव भानुभक्त जैसी सामुदायिक रेडियो मजबूत बनीना सक्कू जहान लग्न आवश्यक लगबोटिलोट एफएम के संचालक समिति अध्यक्ष डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद बजगई रेडियो प्रविधि अनुसार आग बढ़ना रेडियो स्रोत साधन की कमी हुईलक बोटेटी सक्कू सघैना वो सक्कू जहान उपयोग करना आग्रह कलवाट पांच दिन संचालन हुईलक रणनीतिक योजना निर्माण कार्यशाला में दिलक सुझाव एकत्रित करके नया कार्य योजना बनना सामुदाय के सुझाव अनुसार आग बढ़ना

0: फुका पिएर कभी पेन्सिल कभी झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्टा बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग पाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: नरेन्द्र दादू मैं तो अपना फोन आई की डर से आ गई है भौजी कहाँ बाटी
5: ओ गोंदे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरे
4: भौजी कहाँ से काटू अपना है रख आदर पादर तो सफा सुखर बनाई बाटी तर फिर काटी तो जा रहा ना अपना है ना
6: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
4: ना ते भौजी हमारा बाटी अपना ना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा है ना जिंसन एक दिन वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे चेक था लगा के क्यों मोटरसाइकिल बाक लगे उन्हें मैं बैठा कर भौजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
5: ये बेला तक खाना जात थे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
4: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
7: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए लाख सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक रुगा गरगहना घड़ी पेटी मुन्द्री बाकल से फल करा दी बेरमिया अप्रैल से जन समस्या बिना हुए घोषित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपवा कर लखनऊ से ऊपर दौड़ी लिए कस खब ना फिर कठा अशिक कर से लक्त संसार में समस्या हुई सिखा यही ले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिखा
8: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाक पट्टा में एक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेक दिठा
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
1: साउन 16 गते तेस्रो शनिबारका दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 73 77 72।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टी काफुर। न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
3: राहुल कमल हेर्नु बुखाइल बाटो त
4: हेरिन काका, साई फुला टुरे बारीमा गेल रही, तपो काट देली बिस निकाल देवी कि कै के लैके आयल बाटो।
3: सप कटक विषक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा हूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तारीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। बिखार सब कटक हो कि हो के पट्टा लगा सर्वदम सब उपचार में प्रयोग होना एंटी भेनम से उपचार कर
4: सर्पदंश उपचार केन्द्र विषय में मई फिर सुनल त रहू
3: तर कुछ दिन कही आयान तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही। नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था, हस्तक्ष चिंता नहीं पड़त
4: भाई ना तब न तुम कुछ फिर नहीं हुई, मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बाटो।
3: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत से था, मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी। रे बाबू संदेश रोक छत बाहर आता
5: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा। सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नहुएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध करैलबा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहर लह पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेटिथा।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: May I come in, sir?
1: आओ तू पहले चाइना माता झील कर लो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर पायलट के बंदर आ सफा रख लू सर लग के घुआ कहते हूँ लग में तो हलचल नहीं कर मोर सपो का कि छपे ना तो पहला जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चले ना सर
1: विद्यार्थी भैया बाप उतरा सूरज के कहो मोर सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा तपो मूला से फिर वाकर मरहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा और मुआल देख पना सप्पा है ना नंता हाँ सारे पकड़ा नहीं बीच
0: सर नो सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आ संके सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीच गेंतन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वहा मार गई सप्पा है ना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संफी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: पर पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाक आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाइ आऊ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चोक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
1: भैया न करा रेडू बिगरी
2: नहीं का मम्मी टीका पूरे एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 0991-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।
3: नायका मिल सास
4: आओ आओ तू पायलट से आईना माता झील कर लो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
3: कुछ नहीं मिल सास पायलट के 15 सफवा रख लो डर लग के घूमत रहते हो जैसे चेयर से लग लो तो हलचल नहीं करे मोर सपो के छापे न तो पहला जाके
4: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चले ना
3: नहीं चले ना सर
4: विद्यार्थी भैया बापू मुखरा मुरा से कह रो मोर सपो देखो पर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर में रहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मोर सपो मोन देख पर ना सपो है ना नम तो हाथ से पकड़ा नहीं बीच
3: सर मोर सपो देखना से का करना
4: सपो मोल देख पर से थे जात से मोल नहीं रह सकत अथवा मूलक कुछ देर पास संगे सपवा दस सैकट वह उससे मोल अवस्था में फिर सपवा हाथ से चलाई नहीं हुई बेन तनिक नम्मा लट्ठी ले चला था मोल नि मोल कही था जाना सीखी था
5: मोल सरपंच से सावधान रही मोल वा मार गई सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मूलक कुछ देर पास संगे सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
6: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगा आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में सेव दिखा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिकला झोला है।

0: May I come in, sir?
1: आओ तू पायलट से आई ना हमारा झील कर दो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर पायलट के पंद्रह सफवा रख लू सर लग के घूमत रहते हूँ जैसे छह साल लग मतलब हल्का नहीं कर मोर सपो का के था पहनो तो पहला जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेना सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कहो मोर सपो डेबो करा से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल डिप करना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर नौशक को देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल डिप करना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी गेंद तो इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से गिर था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वहां मार गई सप्पा है ना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा समी सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: पर पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगे लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: के तपाईलाई थाहा छ
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
5: हो र
6: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
5: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
5: के छ त विकल्प
6: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
5: विस्तारै गर्दा हुँदैन
6: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
5: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
6: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
5: के तपाईँ चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ
7: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
8: यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
7: मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
5: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको पुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने
8: डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते शनिबार
5: साथै प्रत्येक दिन MBBS फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ
7: स्थान मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 98600 71024 र 98046 77417

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संझे 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र नेपाली पात्र मफिसुटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर बहुमुखी कैंपस द्वारा विद्यालय के नेतृत्व संघ अंतर क्रिया उत्पादन बजार संघ जोड़ना प्रयास करना उपकुलपति प्रधानाध्यापक डाक्टर किशन दत्त भट्टराके कहे। दात्रू में भीमसे लड़के घायते हुए व्यक्ति के प्रहरी द्वारा उद्धार। आईतवार के सार्वजनिक विदा तत्काल में हटना, 2 दिन विदा कायम रहना सरकार के प्रवक्ता। उपराष्ट्रपति यादव संघ स्विस राजदूत शिष्टाचार भेंट।

0: उत्तर बढ़ी मालिकामा टेलिफोन सेवा संचालनमा लन प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट टावर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री धनगढ़ीमा पुग्लको नेपाली सेनाकी हेलिकप्टर उपलब्ध हुलकसँग ढुवानीकरण काम आगा बढ़ेना टेलिकम जनाइरहेका उहाँ के क्रममा मन्त्री डाक्टर तिमिरी सेना प्रधानमन्त्रीकी सूचना संचार तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र संघ बढ़े मालिका लगायतकै दुर्गम क्षेत्रमा संचार सेवा विस्तार गर्नबारे छलफल गर्नबाट उक्त छलफलमा गैर कानूनी अनलाइन सट्टेबाजी एफ बन्द गर्न तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रण के विषयमा फे विचार विमर्श हुलरह अस्तक संचार मन्त्री बढ़ी मालिका नगरपालिकाकै प्रमुख अमर बहादुर खड्कासँग स्थानीय पूर्वाधार तथा सड़क सञ्जालकै अवस्थाबारे जानकारी लिनबाट नेपाल टेलिकम समुद्र सतहमा 4200 मिटर उचाइमा रहलक बढ़ी मालिका मन्दिर परिसरमा 4 जीके सेवा संचालन गर्न लक्ष्य धरलबाट संघ सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा फे 4 जी सेवा विस्तार केलाक अध्ययन हुटिरहल टेलिकम जनैलवा सरकारकी दुर्गम क्षेत्रमा संचालन पुगेन योजना अन्तर्गत भर्खर डोल्पाके लोहान ओ दुनु तथा ताप्रेजुङके लोहाङचुङगोलामा सफलतापूर्वक 4G सेवा संचालन हुटिरहलवा देशभर डिजिटल विभाजन घटलक उद्देश्य के संग 1600 नयाँ टेलिफोन टावर निर्माण के प्रक्रिया बढ़िलक ओ एकरलक नेपाल टेलिकम आगामी आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब रूपियाँ सिधेर बढ़ी लगानी गर्न हुइल्बा। खोज खबरमा फेर्से विश्राम मिश्रम पाछा फेर्से विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जै भो पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
3: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
5: टिचिङ हस्पिटलबाट MD अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
4: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
5: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम COPD
4: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
5: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
4: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
5: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
4: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
5: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
4: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 63 77 72।
6: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछा फेर्से स्वागतबा उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवसँग नेपालकै लाग स्विजरल्याण्डकै राजदूत डाक्टर डिनियल म्युली मेन्टिनिलियो आसलैन चौरस्थित उपराष्ट्रपतिकै कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता कलबाट भेटकै अवसरमा नेपाल र स्विजरल्याण्ड बीचकै द्विपक्षीय सम्बन्धकी विविध आयाममा बाठुलक उपराष्ट्रपतिकै सचिवालय जनाइदबा उपराष्ट्रपति यादव सन् 1956 नेपाल र स्विजरल्याण्ड

0: नरेश दादू मैं तो अपना फल ऐसी की दौड़ती आ गई नो है बहुत ही कहाँ बाती
1: ओ गोंदे में सुतल बाती बाबू चोली न हो रही
0: हो जी कहाँ से काटू न अपना हनर हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने रह बाती तो तर फिर काटी तो जा रहा ना अपना हनर
2: यहाँ पोली भूखो कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
0: ना ते बाऊजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन ग्वारा हना दिन चले दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के को मोटरसाइकिल बाकल से उन्हें मैं बैठा कर बाऊजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम बेरमेन कुछ से खवाई ली हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनिना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से फफल करा दी बेरमिया अक्टेले से झन समस्या बिना बेल को से बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यों मने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबना के कठ असी कर से रक्त संचार में समस्या हुई से था जिहिले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खफाक पौना अवस्था थे आई से था
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता मनाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेट दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: घर कहिया सिर जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
8: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका अन्से कि कत्रा सुगर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 ओ 98486 39261
2: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
3: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
3: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
2: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
3: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
2: रोग सेवा
3: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
2: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
4: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
2: र सिटी स्कैन सेवा
3: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
2: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
3: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
2: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
3: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
2: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
3: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
2: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
3: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091560488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97628435 उपेन्द्र शाह 98216024 57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98557853022 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला
5: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेखल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन उनका घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो होना, कबू कहूँ घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: তো নবলি কলাই আগো পানি শিশু দাউরা পরে সে কি কে ও
1: বুড়ি চিয়া থাপার লেও এই জিনিস পানি আগো ছ
2: ল লিনুস চিয়া দিনেশ বাবু হাজুর পানি লিনুস হাই আজ চিনি অলিক বড়ি পরে জস্ত ছ
3: ওহো রমিলা হিজ ছাউ ভাইরা পেট দুখিও ভানেকো হইন
2: অনি আজ সঙ্গে বসেরা খাইকো তো
1: কি ভ দিদি আমি তো সঙ্গেই বসছৌ সঙ্গেই খাঞ্চৌ কি ফরক পরে তো
2: দিদি পানি यो त हामी महिलाहरूको नियमित हुने प्रक्रिया हो नि यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा के नै छ र
4: अब त कानूनले पनि छाउ बार्न बन्देज गरेको छ
5: छाउ पढी राख्ने छुवाछुत तथा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई 3 महिना कैद र 3,000 रूपियाँ जरिवाना हुन्छ
6: अनि आफ्नो संरक्षणमा रहेका नवजात शिशु अशक्त रोगी ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्था गरी छाड्नेलाई पनि 3 वर्ष जेल र 30,000 सम्म जरिवाना हुन्छ
5: कानून पालना गरौ सभ्य समाज निर्माण गरौ
7: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना, टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कालिम्पोङ नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
3: बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुस्ती सब पफे आई सक
4: ओहो होलिका ठाक समझनो घरक आंदा पादा झफास से बाहर से कच्चा का तहिल बा काटा पना रह
3: असी करी हर बुढ़िया ओ सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाक बासी खाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रह पोहर का व्यवस्थापन कर भी कनी हुई
4: मीठा हो बुढ़वा असिन जाला मत ध्यान घास पोहर झफास भी था साप नुख बैठल रह सकते ना
3: वह और से कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रह ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुख कर थे सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में चबटदार दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा फूल से सांप अना तो कम हो जाए
4: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
5: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
6: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
7: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केन्द्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।